लक्ष्मी मेर प्रयात रखना अंग संसायोना गुर सिखी जीवन दे रोग दा बक्षनी कारज रास होण दी बेनती कर दे। सरदार बलदेव सिंह जी श्रीनगर ता

उड़के स्वा मलेच के करकुड़ा पासार डंका बजे फते का रंग लंगातार चत्र चक्र वर्ती चतार चक्र भुगते स्वयं सुमं सर्वदा संजुगते दुकाल प्रणासे दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगांग विभूते देख तेगो फत है नसर पे दंग्याप तज आज नानक गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख सहाय दरबार में तिर दरबारा सच खंड वसंत रंकारा लक्ष्मी खड़ी तुम्हारे दरबारा सर्व देवते नमस्कार दोहरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूरन करता जगमग जोत बिराज रहे श्री अब चल नगर अपार सत खंड के दरबार।

जय गुरु गुरु निवास अंतरजाम सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सतखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए कीर्तन दे सत्कार दे संतालो बिंत माया हाजर हो जिस खजाने विच माया हाजर किते सो सो खजाने भरपूर करना नाम दान गुर सिखी वाला जीवन वसना दे अरोगता बुखसनिया सम सपूर्ण करनी यात्रा सफल करनी सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण के टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरते राम कली महला तीजा आनंद कवंका सतगुर प्रसाद।

अभे खरी अधो खरी अद्व खरी अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपाद हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम।

अभिव हरि अजेव हरि अजेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि। जलस्तु हि थलस्तु हि नदीस्तु हि नतस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि। भजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमी तुहि जमा तुहि मकी तुहि मक्का तुहि। अभूतु हि अभतु हि अछूतु हि अछतु हि जतस्तु हि व्रतस्तु हि गतस्तु।

त्व प्रसाद कपित खुकमल हरि गज गद हा विभूतधारी गिद्वा मसान बास कद्य वि करत है खुकमट बस लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधई मरत है बिंद के सथैया ताहि हीज की बडैया देत बंदरा सदीव पाए नंग ही फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कह सके तरत है भूत बन चारि छित छौना सब दूधाधारी पौन के आहारी सोभ जंग जानियत है तृण के फचैया धन लोभ के तजैया देत गौवन के जैया वृक भैया मानियत है नभ गए उडैया ताहे पंछ की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है जेते बड ज्ञानी तेनो जानी पै बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उडैया सोच रैया के बखानी है फल के फचैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदिस फिरैया ते तो भूत के पछानी है जल के तरे को गंगे ऋषि कहत जग आ के फचैया सोचा गोर सम मानिए सूरज सिवैया ताहे कौल की बटाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिए नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेन चारी लिखी केस नाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ टेर को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी सार सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पै सहत है न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठांड न बहत है मानव फनिंद देव दानव न पावे वेद वेद योग देव नेत नेत कह कहत है नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव गर्यो करत है चंद्रमात शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को फरत है शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद जारी सन्नत कुमार सी तपस्या न अनत है ज्ञान के विहीन काल हांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मा और विष्ण के ते वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिताए है मोन जी मदार किते असुने कुमार किते अंसावतार किते काल बस भय है पीरे ओ पिकांबर किते गाने न परत एत भूम ही ते होए के फिर भूम ही मिलाए है जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोस लो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को तलत है मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है दारा से दिल्ली सरद रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूमांत भूम में मिरत है सिज दे करे अनेक तोप जी कपट फेस बोस दी अनेक दानी वावत है शीस को कह भयो मल्ल जो पे काढ़त अनेक दंड सो तो न दंडोत अस टांग अथ तीस को कहा भयो रुकी जो बैठार्यो रहो ऊर्ध मुख मन तेना मुड़ने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस को शीस पटकत जग कान में खजूरा धस मुंड छटकत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आग को चरैया फल फूल को भचैया सदा बान को ब्रह्मया और दूसरो नबुक सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीस बृछन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जो कुसो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कस बेटे पर लोक सो नाचे हुई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करे हुई करत है एक पाए ठाट सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चीर देश देश बिचरत है ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बरागी बने कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ बन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई
कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगावे बारी कहूँ दंड धारी हो के लोग न फरमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकार वर शीत काल कुंचर ओगत हा अनेक ताप कारही। कहा भय जो पकल वत्र लियो कांसि बीच चीर चीर चोर टाग उठारन सो मारही। कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ढग मार मार डारही। डूबे नरक धार मूढ़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचारही। ताप के सहित जो बिपाई है तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जो बिपायत अजाप देव बूदना सदीव तुही उच्चरत है। नभ के उड़त जो बे नारायण पाईत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत कतराण की परत कर पताल के बासी के भुजंग न तरत है। कौ भयो मुंडी सन्यासी कौ जोगी भयो कौ ब्रह्मचारी कौ जति अनुमान वो हिंदू तुरक को रावसी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो। करता करीम सोई रास करहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानवो। एक ही किसे सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानवो। देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज उई मान सब एक भय अनेक को भ्रमाव है। देवता देव जस गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देश निज भेष को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक वान खाक बाद आतस ओ आव को रलाओ है। अल्लाह अफेक सोई पुरान हो कुरान हुई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। किते कछ मछ किते उनको करत भछ किते अच वछ हो सपच उड़ जाहेंगे। किते नव बीज अच पच को करेंगे फच कितक प्रतच हो पचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जीव तेज में तेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डूबत केते आग में जरत है। केते गंग वासी केते मति ना मकानी वासी के तक उदासी के फरमाई फिरत है। करवत सहत केते भूम में गड़त केते सुह पे चढ़त केते दुख को भरत है। गैन में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हर देवता विरोध हर दान वड बोध हर बोधक प्रबोध हर जापसी। घस हर चंदन लगाए हर चो अचार पूज हर पाहन चढ़ाए हर लापसी। गाह हर गोरन मनाए हर मड़ी मटली बहार फीतन लगाए हर छापसी। गाय हर गंधर्व बजाए हर किन्नर सब पच हर पंडित तपंत हर तापसी।

रूपं न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं भेखं जोनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बोधदा वृद्धरूपं नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहां बासता को फिर कौन वेखं कहां नामता को कहा कह कहा वे कहा कह बखानो कहे मैं न आवे न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं द्वेखं भेखं जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशीय छेदं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आदभंगे नमो आदभंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपायो सारे गड़े फेर मिटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वय अविनाशी परेयं परापरं पूर्ण प्रकाशी न आदं न व्याधं अगाधं स्वरूपे अखंड प्रताप अदच्छ विभूते न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहं न गेहं सनेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र स्वभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतं भेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनि अच्छयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विघातं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध विरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नियुक्तं प्रभाद अनुक्तं प्रतापे युक्तं गच्छयाद विक्तय यथाव विमुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे कहूं कंज के मज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के हरम जाने कहूं धर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्वभूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दुखं कहूं औषधि रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत वाणी कहूं यक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सादकी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि की भुगत मैं वरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अत्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध शेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्धावस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं वीन विद्या कहूं गान कीर्तन कहूं मलेच्छ व्याख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागबानी कहूं गारुड गूढ़ कथा कहानी
कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजंग धे राजाधिकारी। नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता।

अगंज आद देव है, अभंज भंज जानी है, भूत भूत है सदा गंज गंज मानी है। अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्व साथ है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है, सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है, छिज तेज मानिए, सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिए। नराग रंग रूप है, न रोग राग रेख है, अधोग दागर दज्ज है, अभ्रूत ब्रह्म विख है। न तात मात जात है, न पात जिहन वर्ण है, अदेघ शेख भेख है, सदीव विश्वभरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्वभरण है, जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है। अदवेख है, अभेख है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए। न जंद्रमय न तंद्रमय न मंत्र बस आवई, पुराण कुरान नित नित कह बतावई। न करम मैं न धर्म मैं न भरम मैं बताइए, गंज आद देव है कहो सो कैसे पाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है। नहान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए। न देह है न गेह है, न जात है न पात है, न मंत्र है न मित्र है, न

न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साग है न संग है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न

तस्पति तपस्पति वनस्पति जपसद अगस्त आद जे बड़े तपस्तपी भी सेखिए बेअंत बेअंत बेअंत को ग्रंथ पाठ देखिए अगाध आद देव की अनाद बात बानिए अजात बात मंत्र मित्र सत्र सने जानिए सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोध है।

चक्र चरण वरण जाको जात बात न फेख। रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग, सर्व लायक सर्व खायक सर्व ते अनभंग। सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को व्रतपाल, दीन बंध दयाल स्वामी आद देवा पाल। दीन बंध प्रवीन श्रीपत सर्व को करतार, वरण चरण चक्र जाको

दुष्ट गंजन शत्रुभंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हरता सृष्ट करता जगत मै जय घात भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत अनाथ श्रीपद परम पुरख अभंज धर्म के अनकरम जित किन तौन पसार देव देव द्रव किन्नर मछ कछ अपार भूम का जले थले महमानिये जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र बालक शत्रु घालक।

दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आद वृते चचरासन मारण नरक निवारण पतित उदाहरण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रमक परदन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडा सुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विधुंसन महक मथे दान प्रहारण नरक निवारण अदम उदाहरण ऊर्ध अधे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रमक परदन आदि वृते डावरू डबंके बबर बंके भुजा फरंके तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखण दमके अत सिझमके फुंक फनंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रमक वर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण ध्वजा फलंकण फणी फुंकारण ज्योति जिते सरधार विभरखण दुष्ट प्रकरखण दुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा कासल हृदय थे दामरी प्रहासन सुछव निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन ज्योत प्रणवाचन ऋते नराचन धर्म ऋते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघ ओख निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते फणी अर फंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा काश पताल जनंग चाचर चमकारन चिच्छर हारण धूम धुकारण द्रव मथे दाढ़ी प्रदंते जोग जयंते मरुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रत्येक

धर्म दुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगम थाहे एक वृते जय जय हो सी मखासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते। सुर नर मुन वंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम धारे नरक निवारे आद कथे किंगणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तरे जय जय होसी सब ठौर निवासन पाए पताल कासन ले संकटी निवारण अधम धारण तेज प्रकार खण तुंद तबे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद काद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क पितर्कण तब तर्पतापण जबत जिवे जय जय होसी सस्त बगल खण आद नील गाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे दूर भुजे दामनी दमंके के हर नंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज विलोचन वृतन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरणासे सुप्रत सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मखासुर मर्दन आद अनाद गादोर्धं घंट का विराजे रुणझुण बाजे भ्रम भय भाजे सुरत सुरंग को किल सुन लाजे किल विग भाजे सुखो उपराजे माधोरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिज्जे सब न भज्जे रोह रणंग जय जय होसी मखासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोज अरोधन क्रूर विते धूमराज विधुंसन प्रलय भजुंसन जग विधुंसन शोध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़वते जय जय होसी मखासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते बृडलाज बिहंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुनर प्रतिपारण पत दोधारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय होसी मखासुर मर्दन विश्व विधुंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी।

दुःख्रवक्षण सेवक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारम सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल काहे दुख हरे। गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय हो से मैं खास मर्दन साध प्रदर्शन दुष्ट हंते। कारण करीली गर्भ कहिली ज्योत जतिली तुंत मते अष्टायद चमकन शस्त्र चमकन दामिन दमकन आद व्रते। डुकडुकी दमंके बाघ बपंके ऊजा फुरंके शुद्ध कते जय जय हो से मैं खास मर्दन आद जुगाद अनाद मते। चचरा सुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक फटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंडे अखंडन काल कट्टे। चंद्रानन चारे नरक निवारे पतित उधारे मुंड मथे जय जय हो सी मैं खास मर्दन धूम्र विधुंसन आद कथे। रक्ता सुर मर्दन चंड चक्रदन दान वर्दन बिडाल बदे सरदार विवरखन दुर्जन धरखन अवतुल अमरखन धरम तुझे। धूमराज विधुंसन श्रोणत शुंसन संभन।

ਉਦਨ ਵੈ ਅਨੰਤ ਤਉ ਕਹੋ ਜਥਾਵਤ ਤ੍ਰੈਣ ਤੰਤ ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਕਾਦਰ ਕਿਰਪਾਲ ਅਤ ਵੈ ਅਭੂਤਨ ਵੈ ਦਇਆਲ ਦਾਤਾ ਦੁਰੰਤ ਦੁਖ ਦੋਖ ਰਹਿਤ ਜਿਹੇ ਨੇਤ ਨੇਤ ਸਭ ਵੇਦ ਕਹਿਤ ਕਈ ਊਚ ਨੀਚ ਕੀਨੋ ਬਨਾਉ ਸਭ ਵਾਰ ਪਾਰ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਉ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤ ਜਾਨੰਦ ਜਾਹੇ ਮਨ ਮੂੜ ਕਿਉ ਨ ਸੇਵੰਤ ਤਾਹੇ ਕਈ ਮੂੜ ਪਤ੍ਰ ਪੂਜਾ ਕਰੰਤ ਕਈ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਸੂਰਜ ਸਿਵੰਤ ਕਈ ਪਲਟ ਸੂਰਜ ਸਿਜਦਾ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਰੂਪ ਦ੍ਵੈ ਕੈ ਲਖਾਏ ਅੰਛਿਜ ਤੇਜ ਅਨ ਭੈ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦਾਤਾ ਦੁਰੰਤ ਅਦਵੈ ਅਨਾ ਸਭ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿਤ ਰੂਪ ਅਨ ਭੈ ਕਾਲ ਅਛੈ ਸਰੂਪ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕਾਮਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੁਖ ਦੁਖ ਹਰਤ ਦਾਤਾ ਦਯਾਲ ਅੰਜਨ ਵਿਹੀਨ ਅਨ ਭੰਜਨਾਥ ਜਲ ਥਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਬਤ ਸਾਥ ਜਿਹ ਜਾਤ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਭਰਮ ਜਿਹ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਏਕ ਧਰਮ ਜਿਹ ਸਤਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋ ਏਕ ਸਾਰ ਅਛੈ ਸਰੂਪ ਅਵਿਚਲ ਅਪਾਰ ਜਾਨੀ ਨ ਜਾਏ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੇਖ ਕਹੇ ਬਾਂਸ ਤਾਸ ਕਹੇ ਕੌਣ ਫੇਕ ਕਹੇ ਨਾਮ ਤਾਸ ਹੈ ਕਵਨ ਜਾਤ ਜਿਹ ਸਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾਤ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹ ਚਕਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਿਹ ਖੇਤ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਕਾਲ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤ ਕੀ ਕਰਤ ਪਾਰ ਉਰਧੰਗ ਬਿਰਹਦ ਸਿੱਧੰ ਸਰੂਪ ਬੁੱਧੰਗ ਪਾਲ ਜੁਧੰਗ ਅਨੂਪ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਰਾਗ ਅੰਛਿਜ ਤੇਜ ਅਨ ਭਿਜ ਤਾਗ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਬ ਬੰਤਨ ਦੁਰੰਤ ਜਿਹ ਨੇਤ ਨੇਤ ਨਿਸ ਦੁਨੁ ਚਰੰਤ ਪਾਯੁ ਨ ਜਾਏ ਜਿਹ ਪੈਰ ਪਾਰ ਦੀਨਾਨ ਦੋਖ ਦਹਿਤਾ ਉਤਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਜਿਹ ਪਾਨ ਹਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਰੁਦਰ ਜੁਗਿਆ ਦੁਆਰ ਕਈ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜਿਹ ਨੇਤ ਨੇਤ ਨਿਸ ਦਿਨੁ ਚਰੰਤ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਦੀਨਨ ਕੀ ਵ੍ਰਤ ਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤੋ ਬਾਰਗ ਨੀਮਨ ਗਾਰੇ ਪਛ ਵਸੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਦਿਮ ਸਰਵ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਵ੍ਰਤ ਪਾਰੈ ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ ਕਲਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਤ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇ ਤਨਹਾਰੈ ਦਾਹਤ ਹੈ ਦੁਖ ਦੋਖਨ ਕੌਦਲ ਦੂਜਨ ਕੇ ਪਲ ਮੈਂ ਦਲ ਡਾਰੇ ਖੰਡ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪਹਾਰਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਭਾਰੈ ਪਾਰ ਨ ਪਾਇ ਸਕੇ ਪਦਮਾਪਤ ਭੇਦ ਕਤੇ ਵਾ ਭੇਦ ਉਚਾਰੇ ਰੋਜ ਹੀ ਰਾਜ ਬਿਲੋਕਤ ਰਾਜਕ ਰੂਖ ਰੁਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜੀ ਨਟਾਰੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਕੁਰੰਗ ਭੁਜੰਗ ਮਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਬਨਾਏ ਦੇਵ ਦੇਵ ਖਪੇ ਅਹੰ ਮੇਵਨਾ ਭੇਵ ਲਖਿਓ ਭ੍ਰਮ ਸਿਓ ਭਰਮਾਏ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਵ ਕੁਰਾਨ ਹਸੇਵ ਠਕੇ ਕਰ ਹਾਥ ਨ ਆਏ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਨਾ ਪਦ ਸਿਉ ਕਿੰਸਰੀ ਪਦਮਾਪਤ ਪਾਏ ਆਦ ਅਨੰਦ ਅਗਾਧ ਅਦਵੇਖ ਸਵਭੂਤ ਭਵੇਖ ਭਵਾਨ ਅਭੈ ਹੈ ਅੰਤ ਵਿਹੀਨ ਅਨਾਤਮ ਆਪ ਅਦਾਗ ਅਦੋਖ ਅਛਿਦ੍ਰ ਅਛੈ ਹੈ ਲੋਕਨ ਕੇ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਭਰਤਾ ਪ੍ਰਵੈ ਹੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਕਰ ਸ੍ਰੀਪਦ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾਪਤ ਏ ਹੈ ਕਾਮ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਲੋਭ ਨ ਮੋਹ ਨ ਰੋਗ ਨ ਸੋਗ ਨ ਭੋਗ ਨ ਭੈ ਹੈ ਦੇਹ ਵਿਹੀਨ ਸਨੇਹ ਸਭੋਧਨ ਨੇਹ ਵਿਰਕਤ ਕੇਹ ਅਛੈ ਹੈ ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦਹ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੈ ਦੁਮਰੇ ਸੁਧ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾਪਤ ਲਹਿ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਵੋ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੇ ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵ ਦਿਖਾਓ ਤਉ ਤਨੇਕ ਨ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ ਰਾਖਤ ਹੈ ਅਪਨੋ ਕਰ ਦੇ ਕਰ ਪਾਪ ਸਮੂਹਨ ਫੇਟਨ ਪਾਵੇ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾ ਕਹਿ ਤੋ ਸੋ ਸੋ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਬਟ ਬੀਜ ਬਚਾਵੈ ਜਛ ਭੁਜੰਗ ਸੋ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਭੇਵ ਤੁਮੈ ਸਭ ਹੀ ਕਰ ਧਿਆਵੈ ਭੂਮ ਅਕਾਦ ਪਤਾਲ ਰਸਾਤਲ ਜਛ ਭੁਜੰਗ ਸਵੈ ਸਿਰਨਿਆਵੈ ਪਾਇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਹੁ ਕੋ ਨੇਤ ਹੀ ਨੇਤ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ ਖੋਜ ਥਕੇ ਸਭ ਹੀ ਖੁਜੀਆ ਸੁਰ ਹਾਰ ਪਰੇ ਹਰ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ ਨਾਰਦ ਸੇ ਚਤੁਰਾਨੰਦ ਸੇ ਰੁਮ ਨਾਨਕ ਸੇ ਸਭ ਹੋ ਮਿਲ ਗਾਇਓ ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਨ ਭੇਦ ਲਖਿਓ ਸਭ ਹਾਰ ਪਰੇ ਹਰ ਹਾਥ ਨ ਆਇਓ ਪਾਇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਮਾਪਦ ਸਿੱਧ ਸਨਾਦ ਸਨੰਤਨ ਧਿਆਇਓ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤਹਿ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਜਹ ਕੋ ਅਮਿਤੋ ਜਸ ਬੈ ਜਗ ਛਾਇਓ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਵ ਕੁਰਾਨ ਅਭੇਦ ਨਿਰਪਾਨ ਸਫੈ ਪਚਹਾਰੇ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇ ਸਕਿਓ ਅਨਭੇਦ ਕੋ ਖੇਦਤ ਹੈ ਅਨਛੇਤ ਪੁਕਾਰੇ ਰਾਗ ਨ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਨ ਸਾਕ ਨ ਸੋਕ ਨ ਸੰਗ ਤਿਹਾਰੇ ਅਧ ਅਨਾਦ ਅਗਾਧ ਅਵੇਖ ਅਦਵੇਖ ਜਪਿਓ ਤਿਨਹੀ ਕੁਲਤਾਰੇ ਤੀਰਥ ਗੋਟ ਕੀਏ ਇਸਨਾਨ ਦੀਏ ਬਹੁ ਦਾਨ ਮਹਾਵ੍ਰਧਾਰੇ ਦੇਸ ਫਿਰੇ ਕਰ ਫੇਸ ਦਬੋਧਨ ਕੇਸ ਧਰੇ ਨ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਆਸਨ ਗੋਟ ਕਰੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਧਰੇ ਬਹੁ ਨਿਆਸ ਕਰੇ ਮੁਖ ਕਾਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਕਾਲ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ
त्वा प्रसाद कबित अत्र के चलैया छिद छत्र के धरैया छत्र धारियो के छलैया महासत्रन के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़िया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हो के मान है ज्ञान हो के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हो के काल महाकाल हो के काल है पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमाल ध्यावे गोर कर दे जे गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना की देख बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है फरागे फिरंगी माने गंधारी कुरेसी जाने पच्छम के वच्छमी पछान निज काम है मरहटा मंगेल तेरी मान सो तपस्या करे दिड़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के मंगाली फिर हंग के फिरंग वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रूह के रूहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले बाब पुंज को मलत है गोखा गोने गावे चेर मचीन के शीस ने आवे देव तिथि आए दुख देह के दलत है जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सफलत है देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अवेज कहियत है अंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साधा दीन कहियत है पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पर पाछे पहुँचाता है चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है केते महादीन केते व्यास प्रवीण केते कुमेर गुलीन केते जश कहियत है करते है विचार बना पूर्ण को पावे पार ताहि ते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार व अपार के बखानी है अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है जंत्र हूँ न जात जा की बाब हूँ न मायदा की पूर्ण प्रभा की सो छटा के अन मानी है तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है तेज हूँ कतर है के राजसी को सर है के शुद्धता को गौर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ के रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता की बासी है जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ का घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्रियाना नर है विश्व को भरण है गया पता को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार बार वार हूँ को पार जाग की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमाल गावे हब सिहल बिधावे पूर्व न पार पावे असत्य नाश है देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेव नाथ अद्वय अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया तुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्री के कूल के हंस निशी सी हरुम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चालीसा तो सिंध रूल के पारासी पलाओ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपासी चंदेरी गोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के
फटक सी कैलाज कमाऊ गढ़ कांसी पुर सी सासी सुरंगाबाद निक सोहियत है। हिमासी हिमालय हर हार सी हलपा नेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चांद्रगिर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधार बकान सी बिरंदावाद कीरत तिहारी की उजयारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गायत है। बखरी कंधारी गोर कखरी गुरदे जाचारी बौन गए हारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में बिराज जहां जहां जाइयत है। पूर्ण प्रताप जंत्र मंत्र दया ताबिनाथ कीरत तिहारी को न पार पाइयत है।

हे निर्माण निर्माण सतगुरु नितान देताण उत्यादि उपनी आश्रय आदि आश्रय गुरु गिरि निवास जी आप जी दाज रुच कीर्तन कर दिया हूं यहां सब बेटा जरूरी सुद सच्चे पाशा जी महाराज जिना जिना मैं पावलो सब बेटा जरूरी सुद सच्चे पाशा जी महाराज जो सब नदी ने कलाउनी चढ़दी कला बख्शन गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पहाने सर्वदा

तद जी हर सच्चे सरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ध्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घड़ घड़ अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाना।

मन होइ चित की इच्छा, तव चरनन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब है तुम घावो। आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब है कर तारा, मोर अच्छा निज कर दय करिय। सब बैरन को आज संगरिय।

सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास नवरी है, ऊजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुज जो करी यह रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी छतर दस कंता।

सिमट भय संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आजुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो

दुष्ट दुखत होए मरे, पुरख जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए है, ताके काल निकट न है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध घर

चौपाई सम सतरै सैस भणिज अर्ध सैस फुन तीन कह जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ।

0: द्वापर तपे का सतागिरथ बाओ कलयुग्रते अगन का कूड़ी अगिरथ बाओ महला पहला।
1: साम कहे सत्यमर स्वामी सचमाचे साथ रहे सबको सत्सम

पावड़ी साहिब दया कृपा करे तो साहे कार कराए से सौ सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए से हुक्म मनया होवे परवान तक समय का मैल पाए से कसमें भावै सो करे मनो चुंदिया।